जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: कॉल करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते।
1: ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कम्युनिटी दे विच हाजर है। गोर रोड एंड एबनीजर ते लोकेटेड ने आईपी टीवी अते गुरबाणी रेडियो दियां सर्विसेज दे लई। भावे तुसी 4K आईपी टीवी सुपर फास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बॉक्स लेना या थोड़े कोल बॉक्स हैगा पर तुसी ढिलों वीडियो दे कस्टमर बनना चाहुंदे हो, नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ, तुसी ढिलों वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट, जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, नितनेम दियां सारियां बाणियां ने, ढाडी वारा ने, 300 शब्द ने, 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी, टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो। आईपीटीवी दी टॉप दी सर्विस या ढिलों वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 to 8। 905-204-1313
0: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
3: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰ, ਵੈਨ, SUV ਲੈਣਾ, ਟੌਪ ਟੌਪ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ। ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰਵਿਸ, ਨੰਬਰ 1 ਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਓਨੈਸਟ ਟੀਮ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਸੋ ਕਾਰ, ਵੈਨ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਏਰਨ ਮਿਲਸ ਐਕਿਊਰਾ 905-828-5800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जिया कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंगे, उंगे इत्थे भी कुछ फोक डांस होंगे ने। जेड़ा सारे फोक डांसिंग को जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस, ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तुस सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मी जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वह है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वह स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने के एक अलग तरह की ड्रेस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये कुड़ियाँ भी करुड़ते हैं एक्ट, पर एक टिपिकल जो डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे जिन्हें भी भाई ने वो सैमी सर्कल तो फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं ये। तो ये स्टैप करते करते जोड़ा ये डांस का रिदम होंगे वो कने इनकी जी लय है वह बढ़ती तो घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कने ते कने के कने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जिया कि मैं तुसी दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नु उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा के अच्छा लगदा है सारे एको ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: वार सा शुक्रवार फाइन पंजाब ते अमर वीसी जी पत्ती चो या पर दे संतुला से करता हम सफर सांचा फिरसा
1: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महका दे सौगात वंडदा सांचा फिरसा
0: सोमवार सा शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
2: बिजनेस डे प्रचार ते पसार लई संपर्क करो
1: सांझा विरसा दी टीम नो 647-8435-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो स्नान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण तीन लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobedio.com। होर कोई सेवा?
4: पर रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां। सब तो इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
8: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ।
9: ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
10: ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੋ?
9: ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ।
10: ਲੋ ਭਾਜੀ, ਇਸਕਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ।
9: ਘੀ ਟੇਸਟ ਕੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਾਤੇ, ਘੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਈ ਖਾਤੇ। ਮੁਝੇ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ,
10: ਨਾਨਕ ਘੀ ਭਾਜੀ,
9: ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਤੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਪਿਓਰ, ਇਟਸ ਨਾਨਕ।

0: मम्मी मम्मी भूख लगी है, बर्गर खाना है।
1: इतनी महंगाई है ना तो कुछ घर ही बना दे।
2: ओहो, चिंता काते कर दे हो। तवा किचन ते तीन मिनी बर्गर सिर्फ ते सिर्फ $7 मिल रहे।

0: पर कृपा तो हो ही नहीं।
1: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
2: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
3: रेडियो आवाज,
0: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702B23
1: License number 10394।

डिग्री सेल 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब के नाल जिहड़ी हवा है वह चलेगी। 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब के नाल चलनी जी हवा। ते टेंपरेचर कहिंदे फिर तुसीं उदों फील करना 8 डिग्री सेल्सियस। हुण तां 11 डिग्री है पर जिवें फील तुसीं 8 डिग्री कर रहे हो। ते बाकी जे आपां सारे दिन की गल करिए तां जिहड़ी हवा है जी उही शो हो रही है, ज़्यादा हवा चलनी है। ते बाकी शाम नूं धुप्प जिहड़ी पूरी चमकारे मारूगी 6:52 ते। देखो दिनां दी लंबाई जिहड़ी है हुण घटदी ही जा रही है। जदों आपां फ्राइडे प्रोग्राम कीता सी उदों सीगा कि 7 बजे जिहड़ा सूरज छिपेगा, पर हुण 6:52 ते सनसैट अज हो जाणा है। रात दा टैंपरेचर वी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 कल सवेरे 7 बजे 3 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर तुसी माणोगे। ते 7:22 ते सवेरे सनराइज होना है। ते कल नूं वी मिक्स जिही है, बदल भी है धुप्प भी है। सो हुण ठंडक वल जिहड़ा मौसम है जी वह जा रहा है। ते क्योंकि हवा चलती है ठंडक जिहड़ी होगी, फॉल का सीजन शुरू होया होया ते नाल दी नाल फिर हुण अगे अगे हवावां चलनियां, विचे मीह पई जाणा। उस तों बाद मौसम जिहड़ा हैगा फिर पतझड़ वाला जिहड़ा चल रहा जी, फॉल सीजन, फिर विंटर आ जानी है। सो आमद ठंड दी थोड़ी थोड़ी होगी। सो बच के जी ठंड तों, क्योंकि यही ठंड जिहड़ी गर्म सर्द कर देंदी आपां नूं, कदी गर्मी लगन लग जाती, कदी ठंड लगन लग जाती है। ते फिर आपां कई बार कपड़े उस तरह दे नहीं पाउंदे, ते थोड़ी जी हवा लग गई, जुकाम, खांसी, गला ये फड़िया जाता, कईयां तो फीवर भी हो जाता। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, अपनी हेल्थ का रखो जी पूरा ध्यान, क्योंकि जिहड़ी हेल्थ है ना वो ठीक रहनी चाहिए। जलों आप हेल्दी हाँ फिर सारा कुछ ठीक है, जे हेल्थ प्रॉब्लम कोई आ गई बस फिर तो उधर ही ध्यान है हेल्थ वाला है, बाकी सारा कुछ जरा पिछे रह जाता। सो इस करके अपने आप में पूरा बिल्कुल जिमें का मौसम है जी उमें रखने की कोशिश करो। तो लो जी 10:11 हो चुके हैं, थोड़े लिए शब्द लगाया ज्योति संघ जोत समाना, क्योंकि अज 5 अक्तूबर 1980 श्री करतारपुर साहिब दे विच पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी उन्हों का अज ज्योति जोत दिवस है। सो ज्योति जोत समाए सीगे जी श्री करतारपुर साहिब विखे। सो अज दे दिन बाबा जी नूं करदे हां जी याद, क्योंकि उन्हां दीआं सिक्ख्यावां जिहड़ियां किरत करो, नाम जपो, वंड छको, जे उन्हों असी अपने जीवन दे विच अपना लईए तां बहुत सौखे हो सकदे हां। ते होर भी जिहड़ियां भी उन्होंने सिक्ख्यावां दित्तियां प्रैक्टिकली सानूं समझा के, जिवें साइंस दे विच देखो प्रैक्टिकल हुंदा ना, जदों असी उहो प्रैक्टिकल लैब दे विच जाके करदे हां फिर सानूं बिल्कुल क्लीयर हो जांदे आ जिहड़े भी कॉन्सैप्ट हुंदे आ। सो गुरु जी ने भी इदां ही कीता, पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां, घूम घूम के लोकां नूं जागरूक किया, हर एक विषय नूं उन्होंने छूया। ये नहीं सी भी किसी एक विषय ते ही गल की, ते लोकां नूं मतां दित्तियां। ते लोक भी फिर कई बार तां इह हुंदा बड़ा विरोध करन लग जांदे आ, पर बहुते लोकां ने फिर गुरु जी दीआं सिक्ख्यावां नूं अपनाया, क्योंकि जदों प्रैक्टिकली असीं उह चीज़ नूं समझ लैंदे हाँ ते अपने आप सानूं भी सही गलत दा पता लग जांदा। सो बिल्कुल जी किरत करो, नाम जपो, वंड छको दा उन्होंने नारा लाया, ते हत्थी कम हत्थी किरत करन नूं तरजीह दित्ती। क्योंकि बहुती वार असीं सोचदे हाँ भी नहीं कोई गल नहीं इदां ही चली जाणा, पर नहीं, चाहे आपां कम नूं प्रेफरेंस दे रहे हैं वह जरूरी है, जिवें कम करना जरूरी है, वो तो जड़ी इनकम हो रही है उहनूं असीं जदों अपने ते अपने परिवार ते खर्च करते हैं फिर वो वधिया रहिंदा सारे तरीके दे नाल। जदों असीं गलत तरीके नाल पैसे कमा के वो चीज़ नूं यूज़ करते हैं तो वह अगे जा के सानूं उहदा हरजाना जिहड़ा बड़ा गलत भुगतना पैंदा। ते बड़ा वधिया जिहड़ियां गल्लां बातां सानूं दसियां, ते एक तां बिजी भी रहिंदे हां असीं कम करदे हां, बिजी रहिंदे हां, थोड़ा ध्यान गलत कम्मां वल नहीं जांदा। जिवें कहिंदे आ ना, जे तुसीं किसे नूं वेला देखदे हो, वेला रहिंदा उहदा मन शैतान दा घर बन जांदा। सो इस करके उह कहिंदे सी हत्थी कम करो, जिहड़ा पैसा आउंदा उहदे नाल तुसीं अपना गुजर बसर करो, तां कि तुहानूं वी किसे किस्म दी प्रॉब्लम ना होवे, जिन्नी हो सकदी हैल्प करो, दसवंध कढो। सो दसवंध दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वह बड़े ही कमाल दा, ते साडे सिक्खी दे विच इहनूं असीं बड़े वधिया तरीके दे नाल लैंदे हां। किते भी कोई प्रॉब्लम हुंदी है, चाहे कोई कुदरती आफत किते आ जांदी है, देश विदेशां च किते भी, साडी कम्यूनिटी

0: आज खुश नबात हो गया
1: ओ ता होना ही है जब तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे आई नगदा बन दई
2: है आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
1: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
3: चल क्या रहे यहां पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
5: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादे नाल नहीं काम नाल बनता है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणा तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
7: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ
8: ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀਜ਼ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-405-2828
9: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
10: जब HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
11: हासिल फ्री मूविंग के लिए HK Movers

डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: certified health insurance specialist from TalkTrace Insurance Agency.
1: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एबसेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
2: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

तेरी जुदाई में तो चल नहीं हुंदी। कैसी बात है, ये मुहब्बत की गल हो रही है, इश्क की गल हो रही है, उस इबादत की गल हो रही है, उस प्यार की गल हो रही है, उस नू एक दूजे दे जो मिलन का विछोड़ा पै जांदा उस वेले की गल हो रही है। तेनू मेरी जिहड़ी जुदाई है ना, वो जुदाइयां नहीं चल हुंदियां। कहिंदे हुंदे किसी नू ना कोई बददुआ देनी होवे, जा तेनू कितें विछोड़ा पै जावे, ते पता उन्हूं पैंदा जिहदे नाल विछोड़ा पै जांदा। जिस वेले इश्क दियां प्रीतां लगियां होंदियां ना, इश्क दी मुहब्बत दे विच एक दूजे चार अखियां दो हो जांदियां, ते मुहब्बत दे विच फिर तेरी जुदाई। हरजीत सिंह जी।

मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा। क्या यार लिरिक्स, क्या लिख गए जनाब वाणी है, क्या उन्होंने बातें। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, वाह।

0: वही खुदा है।
1: क्या बात है।
0: दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये चीज़ां मैनू याद है, मैं जिस वेले वसीम साहब गुलाम अली खान साहब के शो कराए सी, तकरीबन इसी चेयर ते बैठे से खान साहब भी आ गए, तो कहिंदे हुंदे सी बड़ियां चीज़ां ना जिंदगी दे विच इस तरह जो म्यूजिक तो बिना भी सुनने का नज़ारा आता है, तो आर्टिस्ट की पहचान करनी हो फिर थोड़ा जा म्यूजिक तो बिना पता लग जाता है, क्योंकि जिस वे म्यूजिक चलता होंगे फिर सज्जे खब्बे सुर हो जाए ना, पता नहीं लगता किसी जो चंगे बंद समझ आते होंगे। तो खान साहब दल्ला कई इस तरह की मेरी जिंदगी मेरे ना काफ़ी टाइम वो गड्डी सफ़र कर रहे थे टोरंटो, जो दो तीन दिन मेरे को रहे से इतने, वो चीज़ा बड़ी चीज़ा असर कर दी है। और मैं समझदा कि इस फनकार अक्तूबर 16 को सुनना है पूरे बैंड के नाल, पूरे ऑर्केस्ट्रा नाल। सब तो वड्डी गल है नुमान साहब, तुहाडा बैंड भी पूरा पाकिस्तान तो आया नाल, क्योंकि अपने जिहड़े मजिशियन हुंदे आ उन्हां नूं पता हुंदा अख दे इशारे नाल फिर कित्थे की करना।
1: बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी कि 100 कस्बी कसब कस्बी कहिंदे जिहनूं बहुत इलम याद होवे,
0: ठीक है,
1: 100 कस्बी ते इक पेती, अपने बंदे हुंदे, अपने म्यूजिशियंस हुंदे, अपना बैंड हुंदा या, वो मिथिये हुंदे या।
0: बिल्कुल सही गल।
1: ते वो अक्सर आर्टिस्ट आंदे या, मतलब आंदे या कले कले आ जाते इथो आके कर लिया उस तरह का, हालांकि आर्टिस्ट बहुत अच्छे होंगे उस तरह का आउटकम नहीं दे पाते, फीडबैक उस तरह का नहीं आता, आवाम जी डिप्रेस हो जाती कि यार इन्हों तो बहुत अच्छा सुनिया इतने आके ऐदा हो गया। तो वह बट जो फिर अपने बैंड ना परफॉर्मेंस होर होंगी है,
0: क्या बात है,
1: उदा मजा होंगे,
0: बड़ी अच्छी गल है। पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरा बैंड जिहड़ा कि स्पैशल तौर पर पाकिस्तान तो नाल पहुंचा है, गुरशरण मान साहब मेरी लाइन से हाजिर हो गया जो स्पैशल तौर पर स्क्वाली नाइट अटेंड कर रहे हैं। गुरशरण जी की हाल चाल है सर?
2: सत श्री अकाल जी, बहुत वधिया, तुसी सुनाओ। और साडे जिहड़े गेस्ट आए ने नूमन हैदर जी, इन्हां नूं वेलकम जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर।
0: तैयारी हो गई सर, पूरी आन दी सर?
2: हां जी बिल्कुल, एहो जिहे प्रोग्राम हुंदे ने जिन्हां नूं असीं मिस नहीं कर सकदे, एहो जिहे प्रोग्राम मिस करना समझ लो पाप ही है एक तरह दा, क्योंकि सुर वाले व्यक्ति तां मिलदे नहीं, दुनिया च बहुत घट ने।
0: जी जी जी,
2: दसदे हुंदे सी कि जिन्हां नूं इस जन्म विच सुर वाली गायकी मिलदी है उन्होंने पिछले जन्म विच मोती दान कीते हुंदे ने, और इन्होंने तो मेरा ख्याल गड्डिया के गड्ढे दान किए होने।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी गल। और गुरशरण जी तुम भी इस पार्ट ऑफ शो का हिस्सा हो, तुसी खुद एक बड़े वड्डे फनकार हो, बड़े वड्डे एक एक्टर हो, बड़िया मूवीज़ दे च, पंजाबी मूवीज़ दे च इन्होंने काम किया है, और तुसी अपने जिहड़े तुहानू प्यार करन वाले आ, तुहाडे प्रेमी आ, तुसी अपने वालों जिहड़े पंजाबी विरसा दे लिसनरशिप आ, पंजाबी विरसा दे परिवार दे जी आ, उन्हां नूं की कहना चाहोगे सर?
2: जी मैं तो यही कहांगा कि जिहड़ी गल कन्नां विच जांदी आ ना, वो मिश्री वांगू घोल जांदी आ, वो उही सुनिया करो, बाकी बहुत कुछ दुनिया च हुण सुनन नूं आ गया, उहनूं थोड़ा जिहा इग्नोर करिया करो, परे रहा करो बाकी चीजां तो। गायकी सुर वाली सुनन दा ही मजा है, और मैनूं ते हैरानी हुंदी आ कि जिहड़े साडे पंजाबी ऑडियंस ने इन्हां नूं कई बार सानू याद कराना पैंदा है एक दो बारी, एहो जिहे शो तां मतलब इह तां सोल्ड आउट है जी, मेरे वालों गारंटीड सोल्ड आउट है।
0: बड़ी मेहरबानी, और तुहाडा प्यार है, तुहाडा मुहब्बत है सर, और तुहाडे वर्गे जदों एक्सपर्ट्स जिहड़े कि इस शो दी शोभा करन, तारीफ करन, तो फिर डेफिनेटली जिहड़ा कि शो सोल्ड आउट होएगा। और तकरीबन दस दिन 80% 85% ऑलरेडी असीं शो खत्म कर बैठे हैं, ते 20% देल हुण किन्नी होंदी है, हाथी लंघ गया ते बाकी गिरह गया तुहानूं पता ही है, ते सारे नूं यही मैसेज है टिकटां जिहड़ियां लैणियां जल्दी लै लो। और गुरशरण जी बड़ी मेहरबानी सर तुहाडी, थैंक यू वेरी मच,
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत वेलकम हैदर जी,
0: बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा टिकटां तुहानूं सिर्फ मेरे को मिलनियां, होर किसे को टिकटां नहीं मिलनियां, ये ना टिकटां होर कोई वेच रहा, ते क्योंकि मैनूं ही कॉल करोगे तुहानूं टिकटां मिलनियां, और ना असीं टिकटां किते होर रखियां, क्योंकि बहुत VIP गैसट जिहड़े इहदे च आ रहे, बहुत डॉक्टर्स आ रहे आ, और लॉयर्स बहुत ज़्यादा इहदे च आ रहे आ, अच्छे अच्छे साडे टोरंटो दे लॉयर आ, CPA अकाउंटेंट आ रहे आ बहुत ज़्यादा इहदे च, जे तुसीं भी चाहुंदे आ कहिंदे मैं अगे भी किसे कर रहा सी, जिवें दा रंग होवे ना, रंग दे ढल जाइए रंग उदां दा बन जांदा, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हैं साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मैंगी जी को।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मैंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मैंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमान। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाजमान, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील रोड यूनिट।
9: दोस्तों, मैं रविंदर वडाली ते मैं आ रहा जी 11 अक्टूबर को टोरंटो रोज थिएटर दे अपने शहर थोड़ी डिमांड
10: बदनाम करती है
9: ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इसी शो मिस ना करो। सो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे। सत श्री।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864,
0: 905-358-0864, ढाबा ऑन द फॉल्स।

0: 302 13 22 जेलो टायर सेंटर
1: टेंडर एवरी सूट कर दिया जट्टा नू
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
3: भाई कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
0: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो ओत्थे तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तों पहला एक नाम याद रखो कोमल ट्रैवल एंड टूर्स डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है शिप क्रूज ले जाना है जां फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज तां कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालियां नू 905-200-47-11 905-239-7711 कोमल ट्रैवल एंड टूर्स
5: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफ

0: हंसते हंसते कट जाए, क्या बात है। रेडी प्राइम देश प्रदेश ना जुड़े हैं दोस्तों। टेलीफोन नंबर 905-564-44-44। एक छोटी जी ब्रेक लानी पड़ी है, तो ब्रेक लेके असि वापस आ रहे हैं। जुड़े रहो देश प्रदेश दे नाल।
1: प्रमोट योर बिजनेस देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी तुहाडे अंग संग 24 घंटे सत्तो दिन। हुण तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारां ही बिजनेस दी ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके हैं ते करवा रहा है। इम्पोसिबल इज नथिंग। तुसी भी अपने बिजनेस विच वाधा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ। फॉर बुकिंग्स कॉल तजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551 416-725-2551।
0: ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੱਤ ਸ਼ਿਖਾਮਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ 45 Dust Drive ਫਿਫਟੀ ਫੈਂਡਰ ਵੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਆ और 600 हैस्पनल रोड कैम्ब्रिज नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रल बुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रल बुड पार्कवे के नेड़े आओ। हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।
2: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-44-44
2: 905-564-6444।
0: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। चलो एएम 5:30 तो
3: मैनु पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए nbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।

0: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो सोमवार का दिन है। पीरसन किचन कैबिनेट की मैं जानकारी दिया दोस्तों, ए टू जेड रेनोवेशन करते हैं घर दी है और मैनुफैक्चर भी खुद करते हैं, इंस्टॉल भी खुद करेंगे। किचन कैबिनेट हो गए, क्लोज़ हो गए, बार बनाने या बेसमेंट जो भी बना देंगे, इन्हों को अपनिया सी एन सी मशीन ने जिते कटिंग करते हैं, तो डोर कटिंग होंगी है, फैब्रिकेट तो कोर्स के काउंटर टॉप तराश के वो इंस्टॉल करते हैं। तुम इन्हों शोरूम में जाओगे, शोरूम से बनी बनी किचन कैबिनेट दिखाई है, पर नाल फैक्टरी है, उत्थे तराशते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, फैक्टरी लगी, मशीन लगी हुई ने। लीडिंग मैनुफैक्चर ने 271 ग्लिडन रोड, ग्लिडन तो कैनेडी के नड़े, तो कैनेडी से ग्लिडन के कॉर्नर से इन्हों का है। पीरसन किचन कैबिनेट, रणजीत सिंह का नंबर है 6474004550
1: जी। ते नाले तुसी सोफा मार्टिन कैसा लेदर लाइन नू भी याद रखो, जिहड़े कि पिछले 28 सालां तों तुहानू कैनेडियन मेड बेडरूम सैट्स, सोफा सैट्स बहुत ही टॉप क्वालिटी दे विच प्रोवाइड कर रहे ने। तुसी इन्हां दे दोनों लोकेशंस ते पहुंचो, जिन्ने भी तुहानू फ्लोर मॉडल्स दिखणगे ओह सारे तुहानू अप टू 60% डिस्काउंट दे नाल क्लीयरेंस दे उपर मिलणगे। ते नाल ही तुसी इन्हां दे कोलों फैब्रिक दे सोफे, जिन्ने मर्जी वड्डे तों वड्डे सोफे रेडी करवाओ काउंटलैस कलर ऑप्शनस दे विच। जे तुसी लैदर दे सोफे बनाउणा चाहुंदे हो तां उहदे विच वी तुहानू 50+ कलर चॉइसिस मिलदियां ने। ते इन्हां दे वेयरहाउस विजिट करके तुसीं फ्रेम एंड फोम दी क्वालिटी भी चैक कर सकते हो। ते तुसीं नंबर जरूर नोट कर लो, 24 रीगन रोड एंड 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड, इन्हां दी दो लोकेशंस ने। नंबर 905-803-8056 905-803-8056 या 905-791-8056 905-791-8056 सोफा मार्ट एंड कैसल अदर लाइन दा नंबर है।
0: मॉर्गेज कोई नहीं हैगी है, नीलम सिबडोप ते उन्हां दा नाम तुसी नोट करके रखो। वो कहते कि धड़लेदार लेडी है, कोई नहीं कहने असी मॉर्गेज दी, इन्हां नाल राबता कायम करो, रीफाइनेंस करवाउणा, प्राइवेट फंड चाहिए, तो बैंक ना सीधी तुहाडी गलबात कराउणगे। जे कहते कि पहला बैंक क्रफ्टी की है फिर भी लोन दवा देंगे, कहते इन्ना है, कहते है ना ट्रस्ट नाम है नीलम सिबडोप, 6477398710 इन्हों का टैलीफोन नंबर है, 647-739-8710। रेडियो प्रोग्राम देश परदेश में जुड़े हो, लेने फिर अगली म्यूजिकल ब्रेक।